वाह फकीरे वाह फकीरे, सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे, कौआ जैसे पंख मयूर का अपनी दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे, अपनी दुम में बांधे। अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा, क्या समझे तुम नीचा, मेरा वो सब जाहिल बन गया, इस आलम में तो साहब बन गया। साला मैं तो साहब

0: है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, कैसा राजा भोज बना है मेरा गंगूटेली।
1: क्या गंगूटेली,
0: तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हमसा ना बदलेगा, हमसा ना बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गया, साला तो साहब बन गया।

0: एक असतं बॉक्स ऑफिसवरचं यश आणि दुसरं असतं म्हणजे कौतुकाची थाप म्हणजे पुरस्कार. क्रांतीने गल्ला दिला तर पुढच्या सिनेमाने दिलीप कुमारला त्याचा 8वा आणि शेवटचा सर्वोत्कृष्ट अभिनेता पुरस्कार दिला 1982 शक्ती. विशेष म्हणजे क्रांती आणि शक्ती दोन्ही सिनेमे कथा पटकथा सलीम जावेद यांच्याच होत्या. खरं म्हणजे क्रांतीमध्ये आधी अमिताभ बच्चन पण होता पण शेवटी तो रोल शत्रुघ्न सिन्हाला द्यावा लागला. कारणं वेगळीवेगळी होती पण शक्तीमधील पितापुत्राचा संघर्ष हा मात्र बघण्यासारखा होता. जेवढा ताण टेन्शन पितापुत्रांना सिनेमात दाखवलं त्यापेक्षा असं टेन्शन खरोखर चित्रीकरणात होतं असं म्हणतात. आउटडोर शूटमध्ये काही भाग मुंबईच्या बाहेर चित्रित करण्यात आला. सर्व युनिट दिलीपकुमारसह त्या ठिकाणी पोहोचलं. अमिताभ वेळेवर येणार होता. अमिताभला रिसिव्ह करायला एअरपोर्टवर सर्वजण गेलेत, फक्त दिलीपकुमार नाही गेला. अर्थात दोघेही प्रोफेशनल कलाकार असल्यामुळे भूमिकेवर काही परिणाम झाला नाही. तरीसुद्धा दिलीपकुमार यांनी सलीम जावेद यांच्याकडे आग्रह करून पाहिला की अमिताभच्या वडिलापेक्षा त्याच्या मोठ्या भावाची भूमिका लिहा, पण सिनेमात भाऊभाऊ हा संघर्ष नको होता तर पितापुत्र संघर्ष हवा होता. यात असाच एक प्रसंग आहे शक्तीमधला. मुलाला जेव्हा नोकरी लागते आणि वडील चौकशी करतात, मी तुम्हाला गाणी नेहमीच ऐकवतो पण हा प्रसंग पण तुम्हाला मी ऐकवतो आहे.
1: आपने मुझे बुलाया?
2: भाई विजय, तुम्हारी मां ने मुझे बताया कि तुमने होटल शाहजान में नौकरी कर ली है.
1: जी,
2: कमाल करते हो तुम. अगर खुद नहीं समझ सकते तो कम से कम पूछ तो लिया करो. जानते हो वो होटल किसका है?
1: जी, केडी नारंग.
2: और ये भी जानते हो कि वो किस किस्म का आदमी है? स्मगलर है, बहुत बड़ा स्मगलर है वो. और भी न जाने उसके ऐसे ही कितने गैर कानूनी धंधे हैं. ही इज ए ब्लैकलिस्टेड मैन. और आप वहां नौकरी करने पहुंच गए?
1: मैं उसके होटल में नौकरी कर रहा हूं और होटल तो कोई गैर कानूनी बिजनेस नहीं.
2: बेहतर होगा कि आप मुझे ये सब समझाने की कोशिश न करें. मैं अच्छी तरह जानता हूं इस तरह के होटलों में कौन कौन से जुर्म पलते हैं. कोई जरूरत नहीं ऐसी जगह काम करने की.
1: ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहां कुछ ना कुछ बेईमानी ना होती हो, ये तो आप भी जानते हैं. इस हिसाब से तो मैं कहीं नौकरी कर ही नहीं सकता. मैं एक होटल में काम कर रहा हूं, उसका मालिक स्मगलिंग करता है, चोरी करता है, डाके डालता है, तो डाले मुझे क्या फर्क पड़ता है?
2: लेकिन मुझे फर्क पड़ता है. चारों तरफ लोग तो यही कहेंगे ना कि डीसीपी साहब का लड़का एक स्मगलर के यहां नौकरी करता है, और वो बातें मुझे सुननी पड़ेंगी. और लोग कहें या ना कहें, जो बात गलत है वो गलत है.
1: तो सारी जिंदगी बेरोजगार रहूं मैं?
2: क्यों, क्या तुम इतने गए गुजरे हो कि तुम्हें किसी ऐसी जगह नौकरी नहीं मिलेगी कि जहां ये बेईमानी के धंधे ना होते हों?
1: ऐसी जगह इस दुनिया में तो मिलना मुश्किल है, इसलिए कि जिस जगह आप इतने बरसों से काम कर रहे हैं थोड़ी बहुत बेईमानी तो वहां भी होती है.
2: बकवास बंद करो. कानून की हिफाजत करने वालों में और कानून को तोड़ने वालों में तुम फर्क नहीं जानते, तो जाओ अपने दिमाग का इलाज कराओ.
3: क्या हुआ है? किस बात पे इतनी नाराज हो रहे हैं आप?
2: अच्छा हुआ तुम आ गई. जरा सुन लीजिए साहबजादे कितनी काबिलियत की बातें कर रहे हैं. अभी तक मामूली सी नौकरी दी है उस बदमाश ने, और इनकी वफादारी का यह आलम है कि उसके खिलाफ एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है. अगर कल को वो कोई छोटा मोटा एहसान कर देगा तो तुम्हारे लिए तो वो बाप से भी बड़ा हो जाएगा.
1: उसका तो बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, क्योंकि उस बदमाश ने मेरी जिंदगी उस वक्त बचाई थी जब मेरे अपने बाप ने कानून की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी बचाने से इनकार कर दिया था.
3: विजय, होश में आकर बात कर बदतमीज.
2: इस बात का अफसोस नहीं है मुझे विजय, कि तुमने मुझसे बदतमीजी की है. हाँ, इस बात का दुख जरूर है कि तुम्हारे ख्यालात कितने गलत और कितने घटिया हैं. अब मेरी बात सुनो.
3: अब जाने दीजिए.
2: शीतल, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में मत बोलो. विजय, या तुम उस आदमी के साथ काम करोगे और या फिर इस घर में रहोगे.
1: मैं इस घर से जा रहा हूं।
0: यह अंतर दिलीप कुमार यांनी विधाता, मजदूर, दुनिया, धर्माधिकारी व कर्मा मध्ये काम केलं।

कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे,

फकीरे वाह फकीरे सूट पहनकर कैसा कूदे भांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे। अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया साला मैं तो साहब बन गया एटेंशन साला मैं तो साहब

0: राजा भोज बना है मेरा गंगू तेली।
1: क्या गंगू तेली?
0: तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा।

0: एक असतं बॉक्स ऑफिसवरचं यश आणि दुसरं असतं म्हणजे कौतुकाची थाप म्हणजे पुरस्कार. क्रांतीने गल्ला दिला तर पुढच्या सिनेमाने दिलीप कुमारला त्याचा 8वा आणि शेवटचा सर्वोत्कृष्ट अभिनेता पुरस्कार दिला 1982 शक्ती. विशेष म्हणजे क्रांती आणि शक्ती दोन्ही सिनेमे कथा पटकथा सलीम जावेद यांच्याच होत्या. खरं म्हणजे क्रांतीमध्ये आधी अमिताभ बच्चन पण होता पण शेवटी तो रोल शत्रुघ्न सिन्हाला द्यावा लागला. कारणं वेगळीवेगळी होती पण शक्तीमधील पितापुत्राचा संघर्ष हा मात्र बघण्यासारखा होता. जेवढा ताण टेन्शन पितापुत्रांना सिनेमात दाखवलं त्यापेक्षा असं टेन्शन खरोखर चित्रीकरणात होतं असं म्हणतात. आउटडोअर शूटमध्ये काही भाग मुंबईच्या बाहेर चित्रित करण्यात आला. सर्व युनिट दिलीपकुमारसह त्या ठिकाणी पोहोचलं. अमिताभ वेळेवर येणार होता. अमिताभला रिसिव्ह करायला एअरपोर्टवर सर्वजण गेले, फक्त दिलीपकुमार नाही गेला. अर्थात दोघेही प्रोफेशनल कलाकार असल्यामुळे भूमिकेवर काही परिणाम झाला नाही. तरीसुद्धा दिलीपकुमार यांनी सलीम जावेद यांच्याकडे आग्रह करून पाहिला की अमिताभच्या वडिलापेक्षा त्याच्या मोठ्या भावाची भूमिका लिहा, पण सिनेमात भाऊभाऊ हा संघर्ष नको होता तर पितापुत्र संघर्ष हवा होता. यात असाच एक प्रसंग आहे शक्तीमधला. मुलाला जेव्हा नोकरी लागते आणि वडील चौकशी करतात, मी तुम्हाला गाणी नेहमीच ऐकवतो पण हा प्रसंग पण तुम्हाला मी ऐकवतो आहे.
1: आपने मुझे बुलाया?
2: भाई विजय, तुम्हारी मां ने मुझे बताया कि तुमने होटल शाहजान में नौकरी कर ली है.
1: जी,
2: कमाल करते हो तुम. अगर खुद नहीं समझ सकते तो कम से कम पूछ तो लिया करो. जानते हो वो होटल किसका है?
1: जी, के डी नारंग.
2: और ये भी जानते हो कि वो किस किस्म का आदमी है? स्मगलर है, बहुत बड़ा स्मगलर है वो. और भी न जाने उसके ऐसे ही कितने गैर कानूनी धंधे हैं. इज ए ब्लैकलिस्टेड मैन. और आप वहां नौकरी करने पहुंच गए?
1: मैं उसके होटल में नौकरी कर रहा हूं और होटल तो कोई गैर कानूनी बिजनेस नहीं.
2: बेहतर होगा कि आप मुझे ये सब समझाने की कोशिश न करें. मैं अच्छी तरह जानता हूं इस तरह के होटलों में कौन कौन से जुर्म पलते हैं. कोई जरूरत नहीं ऐसी जगह काम करने की.
1: ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहां कुछ ना कुछ बेईमानी ना होती हो, ये तो आप भी जानते हैं. इस हिसाब से तो मैं कहीं नौकरी कर ही नहीं सकता. मैं एक होटल में काम कर रहा हूं, उसका मालिक स्मगलिंग करता है, चोरी करता है, डाके डालता है, तो डाले मुझे क्या फर्क पड़ता है?
2: लेकिन मुझे फर्क पड़ता है. चारों तरफ लोग तो यही कहेंगे ना कि डीसीपी साहब का लड़का एक स्मगलर के यहां नौकरी करता है, और वो बातें मुझे सुननी पड़ेंगी. और लोग कहें या ना कहें, जो बात गलत है वो गलत है.
1: तो सारी जिंदगी बेरोजगार रहूं मैं?
2: क्यों, क्या तुम इतने गए गुजरे हो कि तुम्हें किसी ऐसी जगह नौकरी नहीं मिलेगी कि जहां ये बेईमानी के धंधे ना होते हों?
1: ऐसी जगह इस दुनिया में तो मिलना मुश्किल है, इसलिए कि जिस जगह आप इतने बरसों से काम कर रहे हैं थोड़ी बहुत बेईमानी तो वहां भी होती है.
2: बकवास बंद करो. कानून की हिफाजत करने वालों में और कानून को तोड़ने वालों में तुम फर्क नहीं जानते, तो जाओ अपने दिमाग का इलाज कराओ.
3: क्या हुआ है? किस बात पे इतनी नाराज हो रहे हैं आप?
2: अच्छा हुआ तुम आ गई. जरा सुन लीजिए साहबजादे कितनी काबिलियत की बातें कर रहे हैं. अभी तक मामूली सी नौकरी दी है उस बदमाश ने, और इनकी वफादारी का यह आलम है कि उसके खिलाफ एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है. अगर कल को वो कोई छोटा मोटा एहसान कर देगा तो तुम्हारे लिए तो वो बाप से भी बड़के हो जाएगा.
1: उसका तो बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, क्योंकि उस बदमाश ने मेरी जिंदगी उस वक्त बचाई थी जब मेरे अपने बाप ने कानून की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी बचाने से इनकार कर दिया था.
3: विजय, होश में आकर बात कर बदतमीज.
2: इस बात का अफसोस नहीं है मुझे विजय, कि तुमने मुझसे बदतमीजी की है. हाँ, इस बात का दुख जरूर है कि तुम्हारे ख्यालात कितने गलत और कितने घटिया हैं. अब मेरी बात सुनो.
3: अब जाने दीजिए.
2: शीतल, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में मत बोलो. विजय, या तुम उस आदमी के साथ काम करोगे और या फिर इस घर में रहोगे.
1: मैं मैं इस घर से जा रहा हूं।
0: या नंतर दिलीप कुमार यांनी विधाता, मजदूर, दुनिया, धर्माधिकारी व कर्मा मध्ये काम केलं।

में किसके वास्ते हूँ मैं, ना जाने इनमें कौन है मेरे लिए, जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए।